हमारा तो ये इंसाफ है, ये इंसाफ होता है। तो याद रखें, जिसने भी इस तरीके से कोई अमल किया है तो ये गैर शरई अमल है, अल्लाह ताला इस पर कभी राजी नहीं होता। और सच बात है, आंखों के सामने वो टूट गए सारे, भाग गए, कहां गए, आहिस्ता आहिस्ता, यानी वो इतनी बिखर गए, कहां सरदार थे और कहां वो आज जमीन पर गिरे हुए। तो ऐसी जो चीजें हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला से इंसान डरे। जमीन पे इंसान तो अपनी मर्जी करता है, अल्लाह ताला उसे ढील देता है, लेकिन जब जालिम को पकड़ता है तो फिर कभी छोड़ता नहीं। और ऐसे कई मिसालें हैं, यानी ये तो मैंने एक मिसाल दी जो मेरी, यानी जो मेरी आंखें के सामने गुजरी। आप अखबार उठा के देख लें, बदला है, बदला है, बदले लिए जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं। अगर इस तरीके से हम सब अमल करना शुरू कर दें तो फिर अमन अमन बाकी रह सकता है? फिर कोई अमन नहीं है ना। वो फिर बल्कि इंसान किसी पर तोहमत कत्ल कर दे उसे, क्यों भी इसने ये किया तो उसने वो किया, तो हकीकत भी ना हो। इसे जो अल्लाह ताला कानून हमें दिया है, जो निजाम है, वो ये है, अगरचे हुक्मरान जो है वो गलत फैसला भी करता है, अगरचे वो रिश्वत भी लेता है बाज़ औक़ात, अगरचे वो फैसला ठीक नहीं करता, तो हमारे जो जिम्मे काम है हम उनके हवाले कर दें। अगर उसको इस दुनिया में सजा ना मिली, आखिर में तो कहां जाएगा वो आखिरत में? सुभान अल्लाह। आगे इमाम साहब फरमाते हैं, ولا نشهد على احد من اهل القبله بعمل يعمله بجنه ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمه الله। امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے بارے میں اس کے عمل کی بنا پر جو وہ کرتا ہے قطعی طور پر جنت یا جہنم کی گواہی نہیں دیتے, بلکہ अच्छे लोगों के लिए जन्नत की उम्मीद रखते हैं और बुरे लोगों, गुनहगारों के लिए जहन्नम का खौफ और खदशा रखते हैं, और साथ ही उसके लिए अल्लाह ताला से रहमत की दुआ और उम्मीद भी रखते हैं। यह असल है और इसको असल नंबर 24 कर दें, यह अलग से असल है उसूल अहले सुन्नत जमात के अकीदे में से। याद रखें, किसी शख्स के लिए भी यह गवाही देना कि फलां शख्स जो है कि वो जन्नती है दोजखी है, शरान जायज नहीं है। ये वो ये बदअकीदगी में इसका शुमार होता है। जानते हैं क्यों? कि किसी के लिए गवाही देना कि फलां शख्स जन्नती है, सतालो इल्म गैब से है, बारकल्ला फीक। अब कौन जन्नत में कौन दोजख में, हमें क्या पता? वाहिरन हम तो ये देखते किसी का अमल अच्छा है, हम कहते हैं, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला इसके अमल को कबूल फरमाए और इसे जन्नत अता फरमाए, या इसकी शहादत को कबूल फरमाए, या हम शहादत की उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से कि इसकी शहादत कबूल फरमाए। एक ये तरीका है जो शरई और सही तरीका है। दूसरा है फलां शहीद है, फलां जन्नती है, फलां दोजखी है। नहीं, ये शरान जायज नहीं है कि किसी पर यह फतवा लगा देना कि कौन जन्नती है कौन दोजखी, हमारे बस की बात नहीं है ये। हां, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके बारे में यह फरमाया कि जन्नती है, हमारा ईमान है वो जन्नती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी और वही के जिल्लत ने खबर दी है कि फलां जन्नती फलां दोजखी है। कुरान मजीद में जिसका जिक्र आया है कि जन्नती है दोजखी, उसके हमारे ऊपर ईमान है कि सारे मोमिन जन्नत में है, हमारा ईमान है। सारे काफिर जहन्नम में है, हमारा ईमान है। इंडिविजुअल तौर पर अबू लहब जहन्नम में, तब इब्तिदा बिलहबिन व तब, फिरौन जहन्नुम में है, ये कुरान मजीद इसके दलाइल मौजूद हैं। इसी तरीके से अबू बकर जन्नत में है, उमर जन्नत में है, उस्मान जन्नत में, अली जन्नत में, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, और दीगर जो अशर मुबशर बिल जन्न, 10 सहाबियों को जन्नत की खुशखबरी सुनाएगी। कौन है 10? जल्दी से बताएं मुझे, मैंने पहले भी कहा था मैं पूछूंगा। 4 तो मैंने नाम ले लिए, 6 बाकी हैं, जल्दी से। जुबैर बिन अवाम 7, एक एक बस अपने एक बता दिया, तलहा बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु 8, सामी बिन कहल अन्हु, कितने हो गए? 4, 5, 6, 7 हो गए, अब्दुर्रहमान बिन औफ 8, बाकी 2 हैं, अबू उबैद बिन जर्राह 8, बाकी 2 हैं, 2 बाकी एक है, 9 हो गए, बाकी 1 है। सईद, बारकल्लाह फीक, سعيد بارك الله فيك, سعيد بن زيد بن عمرو بن نفر رضي الله عنه, وانا صحابه جميعا। तो ये हम क्यों कहते हैं कि ये जन्नती है?

वैसे ही है, तौबा तो वैसे ही नहीं है, सेंचुरी पूरी हो गई, 100 पूरा कर लिया। दिल की तंगी मौजूद है, इसमें एक यह फायदा भी है, बिदअती और कबीरा गुनाह करने वाला, बिदअती कबीरा गुनाह है और फासिक, बिदअती और फासिक में बड़ा फर्क है। बिदअती बिदअत को दीन समझकर करता है, उसका दिल नहीं तंग होता, तौबा क्यों करे जब वो अच्छा काम कर रहा है, उसको बुरा कहां समझता है। लेकिन फासिक और फाजिर जो है, उसे पता मैं गलत कर रहा हूं, और उसका दिल तंग होता जाता है जितना वो ज्यादा गुनाह करता जाता है। उन शख्स का अल्लाह बेहतरी चाहता था, समझ आ गए। याद रखें, इंसान के दिल जो है अल्लाह ताला के दो उंगलियों के बीच में, जब चाहे फेर दे। उसका दिल फिरा, तंगी महसूस हुई, फिर पूछा, अब तो मैंने 100 कत्ल किए, 99 तो रास्ता नहीं था, अब कोई रास्ता है? और जब अल्लाह, जब उसकी नीयत सच्ची थी, उसका इम्तिहान था, जब उसकी नीयत सच्ची थी, अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया, उसको एहरास भी लगा दिया। भाई हमारा काम है नीयत को सही करना बस। ये ढंग अगर आपको आ जाता है कि आपकी नीयत कैसे दुरुस्त होती है, तो कामयाबी ही कामयाबी है। कहां से रास्ता कैसे आसान होता है, आपके गुमान में भी नहीं होगा। जो आज मुश्किल हमें पेश आ रही है, अभी बाकी है, अभी इखलास बाकी है। इसलिए सलफ सालहीन जो हैं, इमाम सुफियान थौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दीन के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा, सबसे मुश्किल इखलास, नीयत का मामला सबसे मुश्किल। अगर उनके लिए मुश्किल था, तो आज हमारे लिए क्या है? हम तो कहते हैं बस बड़े इबादत गुजार हैं, बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे लोग हैं हम, बस काफी है, हरगिज़ नहीं। नीयत का मामला बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। या तो इबादत अल्लाह ताला कबूल फरमा रहा है, या बातिल है, रियाकारी तो बातिल है। बहरहाल अल्लाह ताला ने जब उसकी सिद्क नीयत को देखा और कबूल फरमाया, उसने उस शख्स से सवाल किया जिसे उसे रहरास पे लगाया। सवाल करते रहो, जस्तजू में लगे रहो, मायूस ना हो, रास्ता अल्लाह ताला दिखाएगा। उस शख्स ने कहा, जाओ फुलाना आलिम है, वो तुम्हें जरूर रहरास लगाएगा। तो ना जाते आलिम के सामने अर्ज करता है, मैंने 100 कत्ल किए हैं, कोई बख्शिश है, कोई जरिया बख्शिश का? सर, तुम यहां क्या करने आए हो? तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच में कौन आ सकता है? तौबा करो, तुम्हारी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा इखलास नियत के साथ। लेकिन एक शर्त है, जिस माहौल ने तुम्हें कातिल बना दिया, उस माहौल में वापस ना जाओ, सीधा चले जाओ, फुलां बस्ती है वहां पे अच्छे लोग रहते हैं, वहां पर चले जाओ। चुनाचो घर, वो शख्स जो ही दरवाजे से निकलता है, अपने घर की तरफ नहीं जाता, सीधे चले जाते बस्ती की तरफ, जिस तरफ इशारा किया वहां पर चला जाता है। आबिद को, उस आबिद को कत्ल किया उसकी जहालत ने, और जहालत जानलेवा बीमारी है, याद रखें, हलाकत है, जहालत हलाकत है। सिर्फ इबादत करना काफी नहीं है मेरे भाइयों, बगैर इल्म के सिर्फ इबादत तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि वबाल जान बन सकती है, और यह हदीस इसकी गवाह है। और इल्म से जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी भी, इल्म से रोशनी है, आपका रास्ता रोशन हो जाता है, आप देख सकते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हक है, क्या बातिल है। और उस आलिम ने जब उसे रहरास पर लगाया, तो उसे सिर्फ वो नहीं बताया जो वो चाहता था, उसका हल भी बता दिया है। और यह उलमा का काम होता है, यह उलमा की निशानी है। वो किस लिए गया था? तौबा के लिए बस। अगर वो आलिम ये बता देता कि तुम्हारी तौबा कबूल है, खामोशी इख्तियार कर लेता,